अस्सलाम वालेकुम। सामने हम सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 12 सितंबर प्रो सप्ताह इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने परिनशियात को शॉर्टवेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा 3 ईस्ट और 4 वेस्ट में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। सामने आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें, सिरसावार प्रोग्राम, देने वाले हाथ की कहानी और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हस्बे मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपन।

हम पहले आज की खास खास खबरों का खुलासा सुनते हैं। सऊदी अरब का कहना है कि इराक से भेजे गए ड्रोन्स ने तेल की पाइपलाइन को निशाना बनाया है। तुर्की और सऊदी अरब ने तेल पाइपलाइन हमले के बाद इलाके कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। यमनी फौज ने ऐलान किया है कि इसकी फौज ने मुल्क के मरबी साहल के इलाकों बशमोल शहर अलमहा के अतराफ के इलाकों पर फजाई हमले शुरू कर दिए हैं। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मरबी ममालिक पर इल्जाम लगाया वो अपनी आलमी ताकत को बरकरार रखने के लिए हर तरह के हथकंडों का सहारा ले रहे हैं। अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब का कहना है कि इराक से दागे के ड्रोन्स ने तेल की एक पाइपलाइन को निशाना बनाया। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि इराक से उड़ान भरने वाले ड्रोन ने मशरकी मरबी तेल की पाइपलाइन को निशाना बनाया, जिससे कारकुन जख्मी हुए। पाइपलाइन को फौरी तौर पर बंद करना पड़ा। रियाज ने इस हमले की मुजम्मत करते हुए इसे पाइपलाइन पर बराह रास्त हमला करार दिया है। सऊदी अरब ने कहा वो बगदाद की दरख्वास्त पर फिलहाल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। तमाम मुल्क ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर जरूरी हो तो वो अपनी खुद मुख्तारी सलामती के दिफा के लिए काम करने का हक महफूज रखता है। हुकूमत इराक ने सऊदी अरब के तहमुल मिजाजी का खैर मुकदम किया है। बयान में कहा गया है कि इराक के वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी ने हुकूमत इराक से दरख्वास्त की है कि उन्हें अपने मुल्क से सऊदी अरब हमसाय मुल्क के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए इकदाम करने का मौका दिया जाए। बगदाद ने हमले की मजम्मत की, जिम्मेदारों की शिनाख्त के लिए जाम तहकीकत का आगाज किया। खलीज के करीब बकी को बहराम के साहल पर यांबू बंदरगाह से जोड़ने वाली पाइपलाइन तेजी से नाजुक बनती जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब को अपने हुरमत से गुजरे बगैर अपना तेल पहुंचाने की इजाजत देती है। सऊदी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि एक से ज्यादा ड्रोन के जरिए निशाना बनाए जाने वाले रियाज मदीना पाइपलाइन को पहुंचने नुकसान की मरम्मत के लिए काम जारी है। इस हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई, जो जख्मियों और नुकसान का मोजब बना। तुर्किया और सऊदी अरब ने तेल पाइपलाइन हमले के बाद इलाके कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। तुर्की ने ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन पर हमलों के बाद सऊदी अरब की हुकूमत के साथ इलाकई पेशरफ्त पर गौर किया। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा कान फिदान ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बात की। बातचीत में इलाकई पेशरफ हाली हमलों का इहाता किया गया। यह फोन कॉल सऊदी अरब की वज़ारत तवानाई की जानिब से जुमेरात को रियाज और मदीना के इलाकों पर हमलों के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर पाइपलाइन को बंद करने के बाद सामने आई है। यह वाक़ अगस्त में सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मक्का के मुश्तर दिफाई मुहदे के बाद पेश आया है। मुहदे में कहा गया है कि अफ्रीकन किसी एक पर हमला तीनों मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। यमनी फौज ने ऐलान किया है कि इसके फौज मुल्क के मरबी साहल के इलाकों बशमोल शहर अलमहा के इतराफ के इलाकों पर फजाई हमले शुरू करती है। यह ऐलान इसके एक दिन बाद आया जब फौज ने ताज अलमहा शहर के गिर्दनवा को एक फौजी जोन करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में फौज के तर्जमान माजिद अल-ज़ैदी ने शहरियों से कहा वो ताज अलमहा अलमहा जबाब शहर के इस्तेमाल से गुरेज करें। अल-ज़ैदी ने लिखा है कि शहरों को मजीद इतला तक ममनुआ सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रियासती निशराती इदारे अल-जमहूरिया टीवी ने बाद में रिपोर्ट किया कि अलमहा खालिद कैंप और जबलुन्नार में हौसी अड्डों पर सिलसिलावार फजाई हमले किए गए। नशियाती इदारे के हवाले से इसराइल ने कहा है कि हमले में अलमहा में पानी सफाई मनसूबे की हामिल तनसीब के अहाते के अंदर बड़ी तादाद में खुशियों को निशाना बनाया गया। अल-जमहूरिया टीवी ने लहदा तौर पर रिपोर्ट किया कि बाबुल मंदूब के साहली जिले में खुशी अस्करी साजुस्मान को हदफ हमले बनाया गया। हाल ही यमन के मुतानी जंग का नक्शा तब्दील हुआ है, क्योंकि सरकारी फौज हूसियों के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जब जुलाई के अवाल में बरसों की निस्बतन खामोशी के बाद झड़पें दोबारा छिड़ी थी। हूसियों का कहना है कि अब हदीस सूबे के तमाम हिस्से पर काबिज है। ताज के मरबी हिस्से में पेशकदमी करते हुए अलमखा शहर के रेड सी पोर्ट पर कब्जा कर चुके हैं और अपनाए बाबुल मंदूब के नजदीक इलाकों तक पहुंच गए हैं, जो दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में से एक है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मरबी मुल्क पर इल्जाम आयद किया वो अपनी आर्मी ताकत को बरकरार रखने के लिए गंदे हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम के पैनल से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा आदमी मुकाबला सियासत और बैन को रियासती ताल्लुक में तेजी से फैल रहा है। पुतिन ने दावा किया मरबी मालिक समंदर में सनती तनसीबा पाइपलाइन और बहरी जहाजों को निशाना बनाते हैं, जबकि साथ ही साथ पाबंदियां आयद कर रहे हैं, नई पाबंदियों की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने नोट किया रूस को 30,000 से ज्यादा पाबंदियों का सामना करना पड़ा था, हम इनसे मुल्क की आजादी को तकवीत मिली है। रूस को काबिल इत्तमाद पेश किया सी शराकतदारों के करीब लाया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब यूक्रेन और ईरान में जंगें जारी हैं तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से कहा है बातचीत और सफारकारी तनाजात के हल को आगे बढ़ने का रास्ता है।
मोदी ने जुम्मा को नई दिल्ली में ब्रिक्स ब्लॉक के समिट के जिमनी इजलास के दौरान पुतिन से बातचीत की। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, वजी अजम ने भारत रूस खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर सदर पुतिन के साथ जामिया बातचीत की। रहनुमा तजारत तवानाई दिफा खलाई शोबे अवाम के बाहमी रवाबत में शोबा जाती तामन में पेशरफ का जायजा लिया, जो भारत रूस देर पर शराकत दारी का कलीदी तवज्जो के शोबे हैं। जायसवाल ने कहा, रहमान ने इलाकाई आलमी सतह पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया है। तर्जमा ने कहा, वज़ीर आज़म ने इस बात की ताकीद की कि तनाजात के हल के लिए बातचीत सरकार ही वाहद रास्ते हैं। मास्को न्यू दिल्ली के सबसे अहम स्ट्रेटेजिक शराकत दारों फौजी साजमान के फ्राहम कनिंगान में से एक है और भारतीय नशरियाती दारों रहमों को न्यू दिल्ली कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुस्कुराते एक दूसरे कंधे थपथपाते हुए दिखाया है। ब्रिक्स के रहनुमा और सीनियर अहदेदार हफ्ते को नई दिल्ली में ग्रुप के 18वें सरप्राइज इजलास के लिए यकजा हुए। तवील मुद्दत अमरीका ईरान और रूस यूक्रेन जंगों ने आलमी तजारत तवने की सलामती इक्तसादी इस्तेहकाम पर जारी मुसाकरत को अपने जेर असर रखा है। यह सरप्राइज इजलास एक ऐसे वक्त में सर अंजाम पा रहा है जब अमरीका ईरान तनाजिन तवने के बहरान को तूल दे रखा है और दुनिया भर महंगाई तजारती खलल तवने की रसद के बारे में खदशात पे इजाफा हुआ है। भारतीय सियासत नरेंद्र मोदी ने कहा, वो उम्मीद करते हैं कि इजलास के मुस्बत मौसर नतज होंगे, जबकि चीन ने कहा वो दीगर ब्रिक्स अरकान के साथ बातचीत मुजाकरा को फरोग देने इलाके व आलमी अमन इस्तेकाम के तहफ़ के लिए काम करने के मुंतजर हैं। ये 11 रुकनी तंजीम ब्राजील रूस भारत चीन जनूबी अफ्रीका व मालदीव के नाम पर ब्रिक्स बना के अलावा मिस्र एथोपिया इंडोनेशिया ईरान सऊदी अरब तदर अमारात को यकजा करती है। चीनी सदर शी जिनपिंग ईरान के सदर मसूद पेजलिस्कियान रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा इन रहनुमाओं में शामिल हैं जो शरीक हैं। साथ ही दीगर रुकन मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले हुक्काम भी मौजूद हैं। पहले रोज एक बंद कमरे का इजलास मुनक्किद हो रहा है जिसका महवर जामिया आलमी निजाम और कसीर जहती अमल को मजबूत करना होगा। रहनुमा भारत इन एक्स नुमाइश का दौरा करेंगे, शिरकत की तकरीब में हिस्सा लेंगे और मोदी की जानिब से दिए गए इशाये में शिरकत करेंगे।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: ईरानी सदर मसूद पजिशकियान ने भारत में ब्रिक्स इजलास से पेशतर कहा है कि अमेरिका का इनके मुल्क पर दबाव एक नाजुक खतरनाक मरहले तक पहुंच चुका है। उन्होंने जुम्मे को कहा, हालिया बरसों में ईरान को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। अमरीकी और इसराइली फौजी जहरीत के बाद हालिया महीनों में दबाव एक नाजुक और खतरनाक मरहले तक आन पहुंचा है। उन्होंने मजीद कहा, आज दुनिया पेचीदगी के दौर से गुजर रही है। अमेरिका ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकॉस्ट शुरू किया, जो एक नए सिलसिले की बेमिसाल पाबंदियां जो तेहरान के खिलाफ अमेरिकी इसराइली जंग के 6 माह गुजरने के बाद ईरानी हुकूमत को सहारा देने वाली हर बाकी माशी ताल्लुक को मुनकता करने के मकसद से नाफिज की गई। महर न्यूज एजेंसी के मुताबिक इससे पेशतर पजिशकियान ने कहा था वो अमरीका के साथ जंग जारी रखने के हक में नहीं है, अगले मरहले के लिए मुल्की मुजाहमत मजबूत करने का मुतालबा किया। इनके ये बयान ईरानी यूनिवर्सिटियों के सरबराह से मुलाकात के दौरान सामने आए थे। पजिशकियान ने कहा, मैं जंग जारी रखने का हामी नहीं हूं, मगर हमें आने वाले हालात के सामने मुल्क की मुजाहमत को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा, मुल्क की मुजाहमत को मजबूत करने के लिए ऐसे रास्ते पर चलने की जरूरत है जो ईरान को दुश्मन के साथ कमजोर की हालत में मुजाकरात पर मजबूर ना करे। ईरानी सदर ने कहा, इक्तसादी इकदाम मौजूदा समाजी हालात को मद्देनजर रखकर उठाए जाने चाहिए। इन तबाहतिया गैर हिसाबशुदा इकदाम इसलाह के बजाय नुकसानदेह साबित होंगे। उन्होंने कहा, हमें माशरे के मसायल को हल करने के लिए जनरेशन जी के तलबा की शराकत से भी इस्तफादा करना चाहिए। एहतजाज के बजाय हल पेश करने में इनकी शिरकत यकीनी बनाई जानी चाहिए। अकवाम ने यमन के खसूसी ग्रुप के जेर कब्जा बोरे अहमद के बंदरगाही शहर मुहा में एक इंसानी इमदादी कंपाउंड के असासों पर गिरफ्तारी के बायस गहरी तश्वीश का इजहार किया है। अकवाम के नायब तर्जमान फरहान हक ने जुम्मे को कहा, इस कंपाउंड में अकवाम के एजेंसियों के कारकुन मौजूद थे जो इलाके की कमजोर बरादरियों को इमदादी सहूलियात फराहम कर रहे थे। हक ने साफियों को बताया, कब्जे से पेशतर तमाम अकवाम के अमले कंपाउंड छोड़ चुके थे, महफूज थे, उनके बारे में मुकम्मल मालूम मौजूद थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इंसानी इमदाद का अमला मकामात असासे हर वक्त महफूज रखे जाए, इमदाद तक बिला रोक टोक और महफूज रसाई को यकीनी बनाया जाए ताकि जरूरतमंद और एहतियाजमंद लोगों तक इमदाद पहुंचती रहे। जब यमन में हिरासत में लिए गए 73 अकवामदिदा गैर सरकारी तंजीमों के अमले के बारे में दरियाफ्त किया गया तो हक ने कहा, अकवामदिदा के पास इनके सिलसिले में कोई मुस्बत खबर नहीं है। उन्होंने कहा, तंजीम की हालत के बारे में तश्वीश रखती है। उन्होंने बताया, कौमतदा का महकमा तहफ़ुज़ और सलामती पेशरफ पर निगाह रखे हुए यमन में अपनी कार्रवाई मौजूदगी का जायजा ले रहा है और तंजीम के मुताबिक कौमतदा के अमले की हिफाजत बशमूल मुल्की अमला अवलिन तश्वीश है। इस दौरान जमीनी सतह पर काम करने वाले इंसानी इमदाद के कारकुनों का कहना है कि शहरी जंग से फौरी फरारी होने पर अमल पा रहे हैं और सितंबर के आगाज से तकरीबन 18,000 घराने बेघर हो चुके हैं। सीआईए ने 11 सितंबर से पहले अमरीकी सुदूर को दी गई 71 ब्रीफिंग को डी क्लासीफाइड किया है। अमरीकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ने 71 इंटेलिजेंस ब्रीफिंग जारी की है जो इससे पेशतर सिर्फ सुदूर बिल क्लिंटन जॉर्ज डब्ल्यू बुश को दी गई थी। सीआईए ने कहा, यह 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों से मुतर तजिया के हवाले से अब तक का सबसे जामिया इंकशाफ है। ब्रीफिंग 1998 से 12 सितंबर 2001 तक के अरसे पर नहीं थी। हमलों से पहले के बरसों में ओसामा बिन लादेन और कायदा की सरगर्मी का सुराग लगाया गया था। हुकाम को बार बार हाईजैकिंग के मंसूबों यहां तक कि वॉशिंगटन की सरजमीन पर मुमकिन हमले के बारे में वाजिया इंतबाहत जारी किए गए थे। 11 सितंबर के हमले जिसमें तकरीबन 3,000 अफराद हलाक हुए ने अमरीकी इंतजामिया के अंदर संगीन इंटेलिजेंस नाकामी को बेनकाब किया था। और ट्रंप ने 11 सितंबर की बरसी को ईरान के साथ जारी रखने से जोड़ा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका 11 सितंबर के हमलों को कभी फरामोश नहीं करेगा। पेंटागन में खिताब करते हुए ट्रंप ने हमलों की बरसी को ईरान के साथ अपने मुल्क की जारी जंग से जोड़ते हुए फौजियों से कहा, हमारी फतह कतई है। ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के वसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करने वाली अमरीकी फौज के खिदमात को सराहा। इस दौरान ज़ेर दफा पैट हेक्सेथ ने प्रयास ईरान को निशाना बनाया। हेक्सेथ ने कहा, ईरान की दहाइयों से अमेरिका को तबाह करना चाहता है। अपनी तकरीर के हिस्से में ट्रंप ने अंदरूनी मुल्क खतरात का भी जिक्र किया, ये बताते हुए कि फतह सिर्फ मैदान जंग में नहीं जीती जाती। ट्रंप ने इस बात की तरफ इशारा किया जिससे उन्होंने मुल्क के अंदर जुनूनी इकदाम करार दिया है। इसके साथ ही स्थायी तुर्किया से खबरें खत्म हुई। سامعین ہم صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں، لیجیے اب فندہ ارار کی آواز میں ایک ترکی گیت سماعت فرمائیے، گانے کے بول ہیں سندن اورندم.

खामोशी से समंदर की गहराई में सफर करने वाले किसी आले का तस्वर करें। बिना इंसान के खुद मुख्तार तौर पर वो अपने हदफ पर मरकूज। तुर्की आप इन गहराइयों में भी अपना असर सो कायम करने की राह पर गामसन है। सामने जब दिफाई सनद की बात आती है तो तुर्की ने हाल ही बरसों में जो इकदाम उठाए हैं वो अब तजारती मेलों से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हैं। सहा एक्सपो 2026 जो कि हाल में इख्तिताम पजीर हुई है ने न सिर्फ निजाम दस्तशुदा माहदों की न सिर्फ एक ताकतवर तस्वीर पेश की है बल्कि इस चीज का भी मुशाहरा किया है कि तुर्की दिफाई शुबे में किधर जा रहा है। पहली चीज, तुर्किया की ज़रिया प्लेटफॉर्म और निजाम तैयार करने की सलाहियत शायद पहली बार इस तरह ठोस अंदाज में मंजरेआम पर आई है। शुमाली कब्रिस्ती तुर्कमुनिया के समुंदर की गहराइयों में कलीदी किरदार संभालने वाली पीला इंसान के मीनिया दो जेन ज़रिया कामिकाज ड्रोन गहरे पानी ग्रोह की शक्ल में काम करने वाले आलात वगैरह। दूसरी चीज इस अमल का मुशाहदा हुआ है कि तुर्की न सिर्फ ये सिस्टम तैयार करता है बल्कि बगैर पायलट सिस्टम के खतरात के खिलाफ इंतहाई जदीद हल भी तैयार करता है। ये अनिया है कि अंकरण इस मामले को महज ड्रोन्स की पैदावार करने की निगाह से नहीं देखा। तुर्की इस मरहले तक कैसे पहुंचा और जरिए आपकी इकदाम इसे दूसरे मुल्क से किस तरह मुनफरद बनाते हैं। हम सवाल का जवाब DRT न्यूज के लिए दिफाई सनत के माहिर कोजान सेल्चुक एरकान के जायजों में तलाश करने की कोशिश करेंगे। एरकान के मुताबिक तुर्किया बेदारी के एहसास से गुजरा है। इस एहसास के मरकजी मामला शामिल है मुल्क की कौमी सतह पर किसी निजाम को तैयार करने का अहल बनना सिर्फ फख्र की बात नहीं बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक तकाजा भी है क्योंकि अमनी मैदान से हासिल होने वाली हर फीडबैक हॉटस्पॉट पर हर मुशाहदा आपको अपनी मसनूआत को मजीद कामयाब बनाने का मौका फराहम करता है। जब आप गैर मुल्की ज़राए पर इंसार करते हैं तो आप इस साइकिल को कायम नहीं कर सकते। एरकान के अल्फाज दो टोक हैं। अंकरण ने दौर को क्लियर अरसे में बांप दिया और पोजिशन संभाल ली। जरे आप मौजू पर जाने से कब एरकान ने ड्रोन सिस्टम पर भी एक अहम नुक्ते को बयान किया है। एरकान के मुताबिक फील एक्सपो के दौरान इस शोबे में 3 माहदे तय करना मुस्तकबिल के लिए एक कवी इशारा है। अब आइए शायद सबसे अहम नुक्ते की तरफ आते हैं, वो है शायद ज़ेली अनासर। एरकान ने यह नुक्ता पेश किया है, ज़रियाब निजाम जो हमने पहले मॉडल या प्रोटोटाइप के तौर पर देखे थे अब अमनी शक्ल हासिल कर चुके हैं। वो सिर्फ माने पर पैदावार शुरू हो चुकी है, मुतलका कोतों के साथ माहदे तय पा गए हैं, लेकिन हैजान अंगेज मामला इस हद तक महदूद नहीं। इस नए बाप में बुलंद मकामी पैदावारी शराखत दर्जहर तंगेज एरकान इसकी वजाहत यूं की है, जरा आपकी एक मुख्तलिफ दुनिया है जो कि अभी तक पूरी तरह दरियाफ्त नहीं हुई। यहाँ कुछ पैदा करने के काबिल होना इंतहाई कीमती है। मिनी आप तो जैन कहरे पानी कामिकास मिशन अंजाम देने वाले प्लेटफॉर्म से आप हमला करने की सलाहितों की इंतहाई बुलंदी तक ले जाने वाला निजाम हमारे मुंतजर है। तो मकामी मवाद का तनासब इतना अहम क्यों है? एरकान इस हवाले से यूक्रेन की मिसाल दी है। यूक्रेन भी बहुत ज्यादा तादाद में ड्रोन सिस्टम तैयार करने की सलाहियत रखता है, तहम इस पैदावार में ज़ेली निज़ाम तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की ज़राए पर मुनहसर है। इसमें यूरोप अमेरिका और चीन से आने वाले अहम अज्जा शामिल हैं। सप्लाई चेन में मामूली सा खलल भी पैदावारी सलाहियत को मादूम कर सकता है। तुर्किया इस हकीकत को पाम चुका है कि गुज़िश्ता चंद सालों में इसने इन सब सिस्टम्स की मकामी पैदावार पर तवज्जो मरकूज की है। सा एक्सपो ने इस काम के सम्राट हमारी आंखों के सामने रखे हैं। एरकान के आखिरी अल्फाज से एक तशखीस पेशीन गोई दोनों खसूसियात के हामिल हैं जिनके अख्ताम पर अगर हम अपने रोड मैप को सही तरीके से जारी रख सकते हैं तो हम एक ऐसा दौर शुरू कर सकते हैं जिसमें सिरे आप सिस्टम्स की तैयारी में हमारा नाम अक्सर लिया जाएगा। तुर्किया वैसे भी आसमानों में अपनी धाक बिठा रहा है और बारी गहरे पानियों की है। दोस्तों आइंदा की पॉडकास्ट तक अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।